बोलो जी वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु जी। प्रभ पास जन की अरदास, तू सच्चा साई, तू रखवाला सदा सदा हो तुद त्याई। अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाए वार, श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं, प्रथम भगवती सिमरकै गुरु नानक लई त्याए। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाए, अर्जन हर गोविंद नो सिमरऊ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरिया करना निधावै ताए, सब थाई हुए सहाए। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाए। दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान धरके। खालसा जी साहिब बोलो जी वाहेगुरु। पंजां प्यारियां चौहां साहिब जादियां, चाली मुक्तियां हठियां जपियां तपियां, जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया, देख चलाई तेग वाही देख के अण डिट कीता, तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धर के बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते, बंद बंद कटाए, खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े, आर्यां नाल चराए गए, गुरद्वारियां दी सेवा लई कुरबानियां कीतियां, धर्म नहीं हारिया, सिखी केसां सवासां संग निभाई, तिना शहीद सिंघां सिंघणियां दी कमाई दा ध्यान धर के बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी। प्रथमै सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चित आवे, चितावन का सदका सर्ब सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रियायत, देख देख फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाए खालसे जी के बोल बाले बोलो जी। बख्शो जी सिखा नू सिखी दान, केस दान रहत दान, विवेक दान विसा दान भरोसा दान, दाना सरदान नाम दान, श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान, चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल, धर्म का जयकार खालसा जी साहिब बोलो जी। सिखां दा मन नीमा मत उचे, मत पत दे राखे आप अकाल पुरख, हे अपने पंथ दे सदा सहाई दातार जियो। गुरद्वारा श्री ननकाणा साहिब होर गुरद्वारे गुरधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है, खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो।

0: मुख कर संतन की तूरे अंतरजामी पुरख विधाते श्रद्धा मन की पूरे नानक दास है सुख मांगे मुख कर संतन की तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: तुदे आगे अरदास हमारी जीव पिंड सब तेरा कहो नानक सब तेरी वडियाई कोई नाम ना जाने मेरा अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहायवार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरकै गुरु नानक लई त्याए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोविंद नू सिमरव श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई जिस जिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया करना निधावै ताए सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान करके खालसा जी साहिब बोलो जी वाहिगुरु। हेन माणियां दे माण नेताणियां दे ताण ने ओटियां दी ओट ने आसरियां दे आसरा धन धन सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी आप जी का कोटान कोट धनवाद शुक्र है। आप जी ने अमृत वेले तो दर्शन दीदार बख्श के निहाल किया शाम के दीवाना की समाप्ति तो उपरंत आप जी के पावन सरूपां की सुखासन की सेवा पावन बाणी सोहिला साहब जी के पाठ होए हैं। सतगुरु समुची सेवा निभाद्या बाणी पढ़द्या हजूरी विचरद्या हुई भुलों की खिमा बख्शनी अगों तो समत बख्शनी जी समूह संगत की हाजरी तिल फुल भेटा दर प्रवान करना सब दिया शुभ भावनावान पूरिया करनिया आप जी के भाणे अंदर दिन सुखों का बतीत होया है रहण आई है सतगुरु अपने भाणे अंदर बतीत करा जी। आप जी के सुखासन तैयार हैं कृपा करो सुखासन अस्थाना चाले पाने की आग्ञा बख्शो विश्राम करो संगतान खुशे बख्शो अमृत वेले फिर दर्शन दीदार बख्श के निहार करना जी। सही गुरमुख प्यारे मिलने जिन्हें मिलिया तेरा नाम चित आवे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबदा भला जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

ताकि निकट न आवै जामो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुरप्रसाद। जप आद सचु आद सच है पी सी पी सच सोचै सोच न होवै जे सोची लख बार। चुपै चुप न होवै जे लाए रहा लिवतार। भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना प्रिया पार। सहस सियाण पान लख होए

तू सदा सलाम निरंकार असंख मूर्खंद घोर असंख चोर हराम घोर असंख अमर कर जाहि जोर असंख गढ़ वढ़ हत्या कमाहि असंख पापी पाप कर जाहि असंख कूड़े आर कूड़े फिराहि असंख मलेश मल पाखाहि असंख निंदक सर करहि भार नानक नीच कहे विचार।

केते मंडल देश केते सद्बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश केते देव दान मुन केते केते रतन सुमंत केतिया खाणी केतिया बाणी केते पात निरिन केतिया सुरति सेवक केते नानक अंत न अंत ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड तथाय नाद विनोद कूड अनंत सर्मखंड की बाणी रूप तथाय काट करिए बहुता नूपता की अंगलना कथिया ना जाहे जे को कह पिछे पछताए तथा घड़िए सुरत मत मन बुद्ध तथा घड़िए सुरासदा की शुद्ध कर्म खंड की बाणी जोर तथा होर न कोई होर तथा जो महाबल सूरत मह राम रहे भरपूर तथा सीतो सीता महमा माहे ताके रूप न कथने जाहे ना उमरह न ठाके जाहे जिनकै राम बसै मन माहि तथै भगत वसहि के लोक रहै आनंद सच्चा मन सोए सच खंड वसै निरंकार कर कर वेखै नदर निहार तथै खंड मंडल वर भंजे को कथै तय अंत नाम तथै लो लो आकार जेव जिव हुकम तिवै तेव कार वेखै विकसाय कर विचार नानक कथना करड़ा सार।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जाप श्री मुख वाग पातशाही दसवीं छपाए छंद त्वे प्रसाद। चक्र चिन्ह अरबरन जा त्रिपात ना हिंजे। रूप रंग रेख भेख को कह न सकत के। अचल मूर्तन भव प्रकाश समित होज के जय। कोट इंद्र इंद्रान साहि साहन गणित जय। त्रिपवनि महीप सुर नर सुर नेत नेत मंत्रण कैत। तय सर्वनाम कथय कवन कर्म नाम वर्णत सुमत। पुजंग प्रयात छंद नमस्तं अकाले नमस्तं कृपाले नमस्तं रूपे नमस्तं रूपे नमस्तं भेखे नमस्तं लेखे नमस्तं काय नमस्तं अजाय नमस्तं गंजे नमस्तं पंजे नमस्तं नामे नमस्तं अठामे नमस्तं कर्म नमस्तं धर्म नमस्तं नाम नमस्तं धाम नमस्तं जीते नमस्तं पीते।

नमस्तं सोएकं नमस्तं अनेकं नमस्तं भूते नमस्तं अजूपे नमस्तं निरकर्मे नमस्तं निरपरमे नमस्तं निर्देशे नमस्तं निरपेशे नमस्तं निरनामे नमस्तं निरकामे नमस्तं निरदाते नमस्तं निरकाते नमस्तं निरतूते नमस्तं अभूते नमस्तं लोके नमस्तं अशोके नमस्तं निरतापे नमस्तं अथापे नमस्तं त्रिमाने नमस्तं निधाने नमस्तं अगाहे नमस्तं अबाहे नमस्तं त्रिवर्गे नमस्तं असर्गे नमस्तं प्रभोगे नमस्तं सुजोगे नमस्तं अरंगे नमस्तं अपंगे नमस्तं अगम्ये नमस्तस्त्रमे नमस्तं जलाश्र नमस्तं निराश्र नमस्तं अजाते नमस्तं अपाते नमस्तं मज्बे नमस्तस्तज्बे अदेशं देशे नमस्तं अपेशे नमस्तं निर्दामे नमस्तं निर्वामे नमो सर्वकाले नमो सर्वदयाले नमो सर्वरूपे नमो सर्वभूपे नमो सर्वखापे नमो सर्वतापे नमो सर्वकाले नमो सर्वपाले नमस्तस्देव नमस्तापेव नमस्ता जन्मे नमस्त सुवन्मे नमो सर्वगौने नमो सर्वपौने नमो सर्वरंगे नमो सर्वभंगे नमो काल काले नमस्तस्तदयाले नमस्तावर्णे नमस्तामरणे नमस्तंजरार नमस्तंकृतार नमो सर्वतन्दे नमोस्तबन्दे नमस्तं निर्शाके नमस्तं निर्वाक्य नमस्तं रहीमे नमस्तं क्रीमे नमस्तं अनन्ते नमस्तं महन्ते नमस्तस्त्राग्य नमस्तं सुहाग्य नमो सर्वसोकं नमो सर्वपोकं नमो सर्वकर्ता नमो सर्वहर्ता नमो जोगजोगे नमो भोगभोगे नमो सर्वदयाले नमो सर्वपाले चाचरी छंद त्वै प्रसाद अरूप है अनूप है अजू है अपू है अलेख है अपेख है अनाम है अकाम है अते है अपे है अजीत है अपीत है त्रमान है निदान है त्रिवर्ग है असर्ग है अनिल है अनाद है अजय है अजाद है अजन्म है अवर्ण है अपूत है अपर्ण है अगंज है अपंज है अचूत है अचंज है अमीक है रफीक है अतंध है अबंध है निर्बूज है असूज है अकाल है अजाल है अल्लाह है अजाह है अनंत है महंत है अलीक है नृश्रीक है नृणम्भ है असंभ है अगम्य है अजम्य है अपूत है अशूत है अलोक है अशोक है अकर्म है अपर्म है अजीत है अपीत है

अनंगी अनाम्य समस्ति स्वरूपे ब्रह्मंगी परमाथ समस्ति में भूते कलंक बिना निकलंकी स्वरूपे नमो राज राजेश्वर परम रूपे नमो जोग जोगेश्वर परमंश दिन नमो राज राजेश्वर परम वृद्धि नमो शस्त्र पाणि नमो अस्त्र पाणि नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता अपेखीय परमीय भोगीय भोगते नमो जोग जोगेश्वर परम जोग।

नमो दान्वान्ये नमो मान्मान्ये नमो रोग रोगे नमस्तंग निशनान नमो मंत्र मंत्र नमो जंत्र जंत्र नमो इष्टे इष्टे नमो तंत्र तंत्र सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणाशी अनुपे रूपे समस्त निवासी सदा सिद्धदा बुद्धदा वृद्धकर्ता दूरदर्दं अगं ओघहर्ता परम परम परमेश्वरं पुरुषपालं सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयालं अशेदी अभेदी अनामं अकामं समस्त प्राजी समस्त स्थामं तेरा

पुनीत मूर्त पूर्ण पुरुषोपाल सर्वेश्वर चो स्वयं भवगण पंजनार काल हीन कला संयुक्त अकाल पुरखा देश धर्म धाम सुपर मरयाता।

गर्भ गंजन दुष्ट भंजन याद रूपा सूत अंगहीन अभंगन आत्मिक पुरखा पार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतिपार सर्वगंता सर्वहंता सर्व तेन भेख सर्वशास्त्र सर्वशास्त्र न जाने जे रूप रंग रेख परम वेद पुराण जाके नित भाग नित कोट सिमरत पुराण शास्त्र न आवही बहुचित मद पहार शंत प्रसाद।

पवित्र पृथ्वीसय अदिशय दृशय कृशय भगवती शन त्वे प्रसाद कहते कि आश दिस क्या भिज पिसा क्या गज कर्म क्या बन पर मैं क्या भिज लो क्या क्या दिसो क्या क्या भूत भरने के विभूत करने के राज प्रवाह है के धर्मन तू जाह क्या सुख मरने के सर्वया भरने के जगत अंकृति है क्षत्रंग क्षत्रिय के ब्रह्म रूपे के अनुभव रूपे के आदा देव है कि आप अपेव है के चित्र महीने के कैदी ने के रोजी रजा के रही मैं रहा के पाक बेब है कि गैबुल गैब है कि अबुल गुना है कि सांसा है कि कारण को निंद है राज को रहिंद है कि कारण को निंद है कि राज को वाहिगुरु कि कारण कनिंद को निंद है कि रोजी निहंद है कि राज करीम है कि कर्म करीम है कि सर्वंकली है कि सर्वंगदली है के सर्वत्र मान्य एक सर्वत्र दानी एक सर्वत्र गौण है एक सर्वत्र पावन है एक सर्वत्र देश है एक सर्वत्र भेष है एक सर्वत्र राज है एक सर्वत्र साज है एक सर्वत्र दीन है एक सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र देश है एक सर्वत्र भेष है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सोखा के सर्वत्र पोखा के सर्वत्र त्राण के सर्वत्र प्राण के सर्वत्र देश के सर्वत्र भेष है के सर्वत्र मान्य सैव प्रधान्य के सर्वत्र जापी के सर्वत्र थापी है के सर्वत्र पहन के सर्वत्र मान के सर्वत्र इंद्र के सर्वत्र चंद्र के सर्वंकली में कर के परम भी में के आकलाना में के साहिब कला में के हुस्न उलवजु है तमाम रुजु है हमेशा सलाम में सली खत मुदा में गनी मुल शिकस्त है गरीब उल परस्त है बिलंद उल मकान ने जमीन उल जमान ने तमीज उल तमाम में रजूल ने दान ने हरीफ उल अजीम मेरे जायक यकीन है अनेक कुल तरंग है अभेद है अभंग है अजीज उल निवास है गनी मुल खिराज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुक्त प्रभा है सुजुक्त सुधा है सदैव स्वरूप है अभेदी अनूप है समस्त उपराज है सदा सर्वसाज है समस्त सलाम सदैव काम है निर्बाध रूप है अगाध है अनूप है ओंकार रूप है अनाद स्वरूप है अनंगी अनामित त्रिभंगी त्रिकामित त्रिभृगं त्रिबाध्य गंजे अगाध सुभंग सर्व भाग्य सो सर्वानुराग्य त्रिभुक्त स्वरूप है अशुद्ध है अशूत है

बेभुगत प्रवाह है, अनुक्स रूप है, प्रयोगतानूप है, चाचरी छंद अपंग है, अनंग है, अपेख है, अलेख है, परम है, अकर्म है, अनाद है, जुगाद है, अजय है, अभय है, अभूत है, अतूत है, अनास है, उदास है, तंद है, अबंद है, अभक्त है, विरक्त है, अनास है, प्रकाश है, निचिंत है, सुनिंत है, अलिख है, अदिख है, अलेख है, अपेख है, अटह है, अगह है, असंभ है, अगम्भ है, अनिल है, अनाद है, अनित है, सुनित है, अजात है, अजाद है, चरपण छंतु है, प्रसाद सर्वंगता सर्वंगता सर्वंख्याता सर्वंग्ञाता सर्वंहर्ता सर्वंकर्ता सर्वं प्राण सर्वं त्राण सर्वं कर्म सर्वं धर्म।

साथे अगाध स्वरूप निर्बाध में पूते अनंगी अनम त्रिपंगी त्रिकाम निरभंगी स्वरूप सर्वंगी अनुपे न पोत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न ताते न माते न जाते न पाते न साकं सुनी के अमितो अमी के सदैव प्रवाह अजय है अजय है अजा है

सर्वंकर हैं, सर्वंकर हैं, सर्वपाश्य हैं, सर्वनाश्य हैं, करुणा कर हैं, विश्वंपर हैं, सर्वेश्वर हैं, जगतेश्वर हैं, ब्रह्मंड से खलखंड से परते पर हैं, करुणा कर हैं।

अमितेश्वर है, परमेश्वर है, अग्रताकृत है, अमृतामृत है, अजवाकृत है, अमृतामृत है, नायक है, खलकायक है, विश्वंपर है, करुणालय है, नृप नायक है, सर्वपायक है, पव पंजन है, अर्गंजन है, रिपतापन है, जप जापन है, कलंकृत है, सर्वाकृत है, कर्ता कर है, हर्ता हर है, परमात्म है, सर्वात्म है, आत्म बस है, जस के जस है, भुजंग पर्यात छंद

कलंकर रूपे अलंकर अलंकिन मुआसिन मुंक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामित्र भंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अक्षरी छंद अजय अलय अपह अभय भुआ जुआनास अकास गंज पंज लख पख काल दयाल अलेख भेगा नाम अकाम अगाह अटाह अनाथ परमाथे अजो नियमो निनरागे नरंगे नरूपे नरेखे अकर्म अपरम अगंजे अलेखे पुजंग प्रयात छंद नमस्तुल प्रणामे सुमस्तुल प्रणासे अगंजलनामे सुमस्तुल निवासे नृकामंग बेपूते सुमस्तुल स्वरूपे कुकर्म प्रणासे सुतर्मंग बेपूते सदा सचदानंद सत्रम प्रणासी क्री मुलकुनिंदा समस्तुल निवासी अजायब बेपूते गजायब गनी में हरियंग करियंग क्री मुल रही में

श्रीपत श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे। वीर अपार बड़े बरियार अबिचार सार की तार पिछैया तोरत देश मलिंद मवास मत गजान के मान मलैया गाड़ गड़ान के तोड़न हार सुबत नहीं चकचार लवैया साहिब श्री सब को सिरनायक जाचिक अनेक सो एक देवैया दानव देव फनिंदन साचर भूत भविख भवान जपेंगे जीव जिते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जै तुन पापन के बुंज खपेंगे सात समूह प्रसन्न फिर जग सत्र सब लोग चपेंगे

विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी सुखी वेदराज ब्रह्मा ज्योतियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जग बनायो देव दैत जच्छन उपजायो आदंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तसही को हमारी सकल प्रजा जने आप सवारी सिवकन को सब गुण सुख दियो सतरन को परमो बद दियो। काट काट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पिशानत चीटी ते कुंचर अस्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला।

रचनी नी कहूँ फूल राजा हुए बैठाओ कहू सिम भयो संकुर कैठाओ सिगरी सृष्ट दिखाए अचंभ आ जुगा स्वरूप स्वयं भव।

कृपा करी हम पर जगमाता ग्रंथ करा पूर्ण शुभ राता किल्बिक सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन को शय करता श्रीयस्तु जब पहिदाय।

की तृष्णा माया मरवरताय माया जित हर विसरै मोहि उपजै पाहु दूजा लाया कह नानक गुर प्रसादी जिना लिव लागी तिनि विचे माया पाया हर आप अमुलक है मुल न पाया जाए मुल न पाया जाए किसै विट हो रहे लोक मिल लाए ऐसा सतगुर जे मिले तिसनो सिर सौंपिए बिचों आप जाए जिसदा जियो तिस मिल रहा है हर वसै मन आए हरिया अमुलक है

सुनते पुनीत कहते पवित, सतगुर रहया भर पूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे। सुनते पुनीत कहते पवित्र,

हम सर दीन दयाल न तुम सर, अब पतियार क्या कीजै, बचनी तोर मोर मन मनै, जन कौ पूरन दीजै। ओम बल बल जाओ मैया कारने,

अहनुष सहज सुभाए दर्शन परसिय गुरु के जन्म मरण दुख जाए दर्शन परसिया

जपै जन नाम ताके निकट न आवे जाम। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल, चवर शतर तख्त दे मालक, बाणी के बोहित कलजुग के जहाज। गुरु गरीब निवाज, सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज। पातशाह जी ने कृपा कीती है, अमृत वेले दर्शन दीदार बख्शिश कीते हन। अज दा अमृत वेले दा पावन पवित्र मुख वाक हुक्मनामा बिलावल महला पंजवां।

तुमरी महिमा वर्णन न सकौं, तू ठाकुर ऊच भगवान। वाहिगुरु साहिब जीओ, गौड़ी सुखमनी महला पंजवां, श्लोक एको अंकार सतगुर प्रसाद आद गुर ए नमः, जुगाद गुर ए नमः, सतगुर ए नमः, श्री गुरुदेव ए नमः। अष्टपदी सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन माहे मिटावो। सिमरो जास

ज्यों बसदा को खोदे को चंदन ले ब्रह्म ज्ञानी का एह गुनाओ नानक ज्यों पावक का सह सुभाओ ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागे जला ब्रह्म ज्ञानी के मन होय परगा जैसे धरी उपर आकाश ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सत्र समान ब्रह्म ज्ञानी के नाही अभिमान ब्रह्म ज्ञानी उचते उच्चा मन अपने है सब ते नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जन पय नानक जिन प्रभाव करे ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना आत्मरस ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया ब्रह्म ज्ञानी ते कछु बुरा न पया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत बरसी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी एक उपरयास ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी समाह ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार माह ब्रह्म ज्ञानी कै नाही धंधा ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा ब्रह्म ज्ञानी कै होए सो भला ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला ब्रह्म ज्ञानी संग सगले उदार नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार ब्रह्म ज्ञानी कै कै रंग ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रभ संग ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत ब्रह्म ज्ञानी अहंग बुद्ध आगत ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी कै कर सदानंद ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता ब्रह्म ज्ञानी कह हुए चिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत ब्रह्म ज्ञानी जिस करै प्राभया ब्रह्म ज्ञानी का बड परता ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड भागी पाईए ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे ब्रह्म ज्ञानी कै सगल मन माहे ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश ब्रह्म ज्ञानी का कथिया ना जाय दे आखर ब्रह्म ज्ञानी सर्ब का ठाकुर ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखाने ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता ब्रह्म ज्ञानी सद जीवै नहीं मरता ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्ब का धनी श्लोक और तारे जो अंतर नाम सर्ब मैं पेखे भगवान निमख निमक ठाकुर नमस्कारे नानको अपरस सगल निस्तारे अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस मन में प्रीत निरंजन दर्श

संतन पाए तन पाया। सदा निकट निकट हर जान सो दास दरगह परवान, अपने दास को आप कृपा करें, तिस दास को सब सोजी परै सगल।

तैसा सुवर्ण तैसी उसमाटी तैसा अमृत तैसी बिख खाटी तैसा मान तैसा विमान तैसा रंग तैसा राजान जो वरताए साई जुगत नानक हो पुरख।

तह तह राखे। ये नानक सब किश प्रभ कै हाथे। कई कोट भय बैरागी, राम नाम संग तिन लिवलागी। कई कोट प्रभ को खोजनते, आत्म मै पार ब्रह्म लहंते। कई कोट दर्शन प्राप्या, तिन को मिलियो प्रभ विनाश। कई कोट मंग हे सतसंग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग। जिन को होए आप सो प्रसन्न, नानक ते जन सदा धन धन। कई कोट खाणी अरखंड, कई कोट काश ब्रह्मंड। कई कोट होए अवतार, कई जुगत कीनो विस्तार। कई बार पसरियो पासार, सदा सदा एक एक अंकार। कई कोट कीने बो पात, प्रभ ते होए प्रमाहे समात।

रात, कबहू महाक्रोध विकराल, कबहू सर्ब की हो तरवाल, कबहू होए बहे बड राजा, कबहू पेखारी नीच का साजा, कबहू अपकीरत मह आवे, कबहू भला भला कहावै, ज्यों प्रभ राखै तिवें ही रहै, गुर प्रसाद नानक सच कहै, कबहू होए पंडित करे बखियान, कबहू मोन धारी लावे ध्यान, कबहू तट तीरथ इशनान, कबहू सिद्ध साधक मुख ज्ञान, कबहू कीट हस्त पतंग।

तुसकी जानो तृष्णा बुझै। साध संग हर हर जस कहत, सर्ब रोग त्यों हर जन रहत। अन दिन कीर्तन केवल बखियान, ग्रस्त मैं सोई निर्बान। एक ऊपर जिस जन की आसा, तिसकी कटी है जम की फासा। पार ब्रह्म की जिस मन भूख,

अनद रूप मंगल सद जाकै सर्ब थोक सुनिए कर ताकै। राज मैं राज जोग मैं जोगी तप मैं तपीसर ग्रस्त मैं भोगी। त्याए त्याए भगतै सुख पाया नानक तिस पुरख का किन अंत न पाया।

जन जन अपना प्रभु पछाता सो जन सर्ब थोका दाता तिसकी सरन सर्ब सुख पावै तिसके दर्श सब पाप मिटावै।

सच उपदेश सेवक उदे मोह माया कै संग ना लेप मन में राखे हर हर एक अंधकार दीपक परगासे नानक पर मोह दुख तै ते नासे तब त माहे ठांड वरताई अनंद पया दुख नाठे पाई जन्म मरण

जाए। तिस ते दूर कहां को जाए, उबरे राखण हार त्याए, निरभउ जपे सकल भउ मिटे, प्रभ कृपा ते प्राणी छुटै। जिस प्रभ राखे तिस नाही दुख, नाम जपत मन होवत सुख, चिंता जाय मिटे अहंकार। तिस जन को कोई ना पहुँचन हार, सिरि उपर ठाडा गुरसूरा, नानक ताके कारज पूरा। मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट, दर्शन पेखत उदरत श्रेष्ठ, चरण कमल जाके अनूप, सफल दर्शन सुंदर हर रूप। तन सेवा सेवक परमान, अंतरजामी पुरख प्रदान, जिस मन बसे सोहोत निहाल, ताके निकट न आवत काल।

संत जना सुनहे शुभ बचन। सर्ब व्यापी राम संग रचन, जिन जाता तिस किए रहत, सत बचन साधु सब कहत। जो जो होए सोई सुख माने, करन करावन हार प्रभ जाने। अंतर बसे बाहर पियो ही, नानक दर्शन देख सा मोही। आप सत किया सब सत, तिस प्रभ ते सगली उत्पत। तिस भावे ता करे विस्तार, तिस भावे ता एक अंकारन। कला लखी न जाए, जिस भावे तिस लय मिलाए।

सुखमनी सहज गोबिंद गुण नाम जिस मन बसे सो होत निदान सर्विशा ता की पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब ते उच पाए स्थान बोर ना होवे आमन जान।

निमखना बिसरो तुम कौ हर हर सदा पजो जगदीश सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी।